नमस्कार अंबाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 4 सितंबर 2026, दिन शुक्रवार, भद्रपदा कृष्ण पक्ष अष्टमी, 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्योदय होगा 6:01 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:42 पर। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हमारे सभी प्यारे श्रोताओं को टीम रेडियो वितस्ता की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व की कोटि कोटि बधाई। माखन चोर आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपके घर आंगन को खुशियों से महकाए।

शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव सहमति होने पर हिंसा और अपराध वृत्ति का अभाव होगा तथा हर तरफ मंगलमय वातावरण निर्मित होगा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

माखन चोर नंद किशोर बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्णा हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी, आवो उनके गुण गाए, सब मिलके जन्म अष्टमी मनाए। सभी सुनने वालों को मेरा जय श्री कृष्णा। भारत के पर्व का एक नया एपिसोड लेकर मैं हूं आपके साथ किरणी। आज का हमारा विशेष टॉपिक है जन्म अष्टमी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णाष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण युगो युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वह कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो वह कभी ब्रज के नटखट कान्हा।

मान्यता है कि जन्माष्टमी व्रत का विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। उस दिन पूजा में सभी प्रकार के फलाहार, दूध, मक्खन, दही, चंदन, रोली, गंगाजल, मिश्री तथा अन्य सामग्री से भगवान को भोग लगाया जाता है। कन्हैया की महिमा, कन्हैया का प्यार, कन्हैया की श्रद्धा, कन्हैया से संसार।

0: श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो बहुत अत्याचारी था, जो देवकी का भाई था। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को काल कोठरी में डाल दिया और देवकी के कृष्ण से पहले 7 संतानों को मार डाला।
1: गो, गो, गो, गोविंदा।
0: पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नजरें कहाँ से लाऊं मेरे कन्हैया, आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाएं।

भगवान विष्णु के आठवें अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया तब भगवान विष्णु ने ही वसुदेव को आदेश दिया कि वह श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचाए, जहां वो अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। तभी से उनके जन्मदिन की खुशी में हर साल जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। गोकुल में जिसने किया निवास उसने गोपियों का संग रचा इतिहास, देवकी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया।

जन्माष्टमी के दिन खास तौर पर मंदिरों को सजाया जाता है। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का भी आयोजन होता है। भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी का विभिन्न स्वरूप देखने को मिलता है। नंद के घर आनंद ही आनंद भयो, जो नंद के घर गोपाल आयो। जय हो मुरलीधर गोपाल की, जय हो कन्हैया लाल की।

दही हांडी की प्रथा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात से संबंध रखता है। दुष्ट कंस द्वारा अत्याचार स्वरूप सारा दही और दूध मांग लिया जाता था। इसका विरोध करते हुए श्री कृष्ण ने दूध दही कंस तक न पहुंचाने का निर्णय लिया। इस घटना के उपलक्ष में दही हांडी का उत्सव मटके में दही भरकर मटके को बहुत ऊंचाई पर टांगा जाता है तथा फिर युवकों द्वारा उसे फोड़कर मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन देश के अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता में बाल गोविंदा भाग लेते हैं। बाल गोविंदा द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। नटखट नटखट माखन चोर, खींचे सबको अपनी ओर। गलियों में अब मच गया शोर, बांसुरी बजाए नंद किशोर। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर।

ले। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे ओ आया बिरज का बाका।

न बहुत बोलो मत थुमक थुमक डोलो चिल्लाओगी तब गोरी जब उलट देगा तोरी गगरी आके पीछे डगरी रे अरे मच गया शोर सारी नगरी रे आया बिरज का पाका संभाल तेरी गगरी रे ओ आया बिरज का पाका संभाल तेरी।

गया शोर सारी नगरी हीरे सारी नगरी हीरे। आया बिरज का पाका संभाल तेरी गगरी रे, हो आया बिरज का पाका।

श्री कृष्ण की प्रमुख जीवन लीला के बारे में बताऊंगी। श्री कृष्ण बालपन के कारनामों को ही देखते हुए इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि वह धरती पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवतारित हुए। श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सूफी संतों के दोहों में राधा तथा अन्य गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम व वियोग लीला का बहुत सुंदर चित्र प्राप्त होता है। कृष्ण ने कर्म संन्यास योग के बारे में भी बताया है। कंस के वध के बाद कृष्ण द्वारकाधीश बने। द्वारका के पद पर रहते हुए वह महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने तथा गीता का उपदेश देकर अर्जुन को जीवन के कर्तव्यों का महत्व बताया और युद्ध में विजय भी दिलाई। प्रेम का सागर लिखो या चेतना का चिंतन लिखो, प्रीति की गागर लिखो या आत्मा का मंथन लिखो, रहोगे तुम फिर भी अप्रभाषित चाहे जितना लिखो, ज्ञानियों का गुंथन लिखो या गाय का गवाला लिखो, कंस के लिए विष लिखो या भक्तों का अमृत प्याला लिखो, रहोगे तुम फिर भी अप्रभाषित चाहे जितना लिखो, पृथ्वी का मानव लिखो या निर्लिप्त योगेश्वर लिखो, चेतना चिंतक लिखो या सतपद देवेश्वर लिखो, रहोगे तुम फिर भी अप्रभाषित चाहे जितना लिखो।

अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैं आपको गीता जी का एक संदेश सुनाती हूँ। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है।

0: महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका अंत निकट है।
0: तथास्तु।

0: दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुँचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए, बोली जनता बोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा,

एक नए एपिसोड में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे आज्ञा दीजिए, ये कामना करते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय राधे कृष्ण।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम जन्माष्टमी के उपलक्ष पर। इसको पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कुमार, रिकॉर्डिंग व निर्देशन भारत सोपोरी। रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से सभी सुनने वालों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यून किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपोई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। कार्यक्रम रंगमंच की ओर में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर सिर्फ रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz।

जानेमन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पन्ने पर लिखी हुई कविता जब किसी इंसान का खून पसीना बन जाती है तो वो स्क्रीन पर कैसी दिखती है? जी हाँ, नमस्कार। एक एक्टर को फिल्में कैसे देखनी चाहिए, इस सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह आज भी एक फिल्म को जी कर आया। फिल्म का नाम है व्यास। गुरदत्त साहब की एक ऐसी मास्टर क्लास जो हर उस इंसान को देखना और सुनना चाहिए जो एक्टिंग की बारीकियों को समझना चाहता है। आज हम बात करेंगे मुख्य किरदार विजय की, और इसे समझने के लिए हम हवा में बातें नहीं करेंगे, हम सीधे चलेंगे प्यासा के तीन ऐसे सीन्स में जो हर नए एक्टर के लिए किसी एक्टिंग स्कूल से कम नहीं है। याद कीजिए वो पल जब विजय को घर से निकाला जा चुका है, वो सड़क पर भटक रहा है और अचानक देखता है कि उसकी जिंदगी भर की कमाई, उसकी कविताएं एक रद्दी वाली के पास 10 आने में बिक रही है। इस सीन में गुरदत्त साहब को ध्यान से देखिए, वो जोर से छाती नहीं पीटते, रोते नहीं, उनकी आंखों में एक खालीपन है। वो बस उस रद्दी वाले को अपनी नजमें फाड़ते हुए देखते रहते हैं। इसे एक्टिंग की भाषा में कहते हैं इंटरनल मोनोलॉग, यानी कि आंतरिक संवाद। उनके होठ खामोश है लेकिन उनके अंदर एक तूफान चल रहा है। नए एक्टर्स को सीखना चाहिए कि आपका दर्द आपके चेहरे की मांसपेशियों से नहीं, आपकी आंखों की गहराइयों से आता है, वहीं से वो दर्द छलकता है। अब आते हैं दूसरे सीन पर। विजय एक पार्क की बेंच पर लेटा हुआ है, थका हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, कोई उसी की लिखी हुई नज़में गुनगुना रहा है। ये है गुलाब। इस सीन में विजय का रिएक्शन देखिए, स्टडी कीजिए उसके रिएक्शन को। एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है, एक्टिंग इज रिएक्टिंग, एक्टिंग इज लिसनिंग। जब विजय सुनता है कि उसकी बेगानी दुनिया में किसी अजनबी ने उसके शब्दों को अपना लिया है, तो उसके चेहरे पर जो अविश्वास, जो हैरानी नजर आती है, वो कमाल है। एक एक्टर के तौर पर आपको सीखना है कि सुनना कैसे है। सिर्फ अपनी लाइन का इंतजार मत कीजिए, दूसरे के शब्दों को अपने अंदर जाने दीजिए और फिर रिएक्ट कीजिए। और अब बात करते हैं क्लाइमैक्स की, जो इस फिल्म का एक अहम सीन भी है। याद कीजिए, ऑडिटोरियम खचा खच भरा है और दरवाजे पर एक परछाई पड़ती है। विजय वहां खड़ा है। पूरी फिल्म में जिस विजय के कंधे झुके हुए थे, वो अचानक बदल जाता है। वो मंच की तरफ बढ़ता है जैसे जैसे कोई विद्रोही, और फिर वो एक गाना गाता है। बड़ा फेमस गाना है वो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपका किरदार अंदर से आजाद होता है तो उसका असर आपकी बॉडी लैंग्वेज पर दिखना चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है। वो झुका हुआ इंसान इस सीन में समाज से बहुत ऊंचा नजर आने लगता है। तो भाई लोग, इन सीन्स में हमने खामोशी, सुनना और बॉडी लैंग्वेज सीखी। चलिए अब वक्त है आपके आज के स्पेशल होमवर्क का। चूंकि हमने सुनने यानी कि लिसनिंग की बात की है, तो आज का चैलेंज भी यही है, और इसे हम कहेंगे डीप लाइन। अब आपने करना क्या है, आपने अपनी किसी अभिनेता दोस्त या फैमिली मेंबर को एक पैराग्राफ देना है। वो पैराग्राफ बहुत गुस्से वाला होना चाहिए या उसमें इमोशंस भरे हुए होने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आपको नहीं पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। अब अपना कैमरा ऑन कीजिए, अपने दोस्त को कैमरे के पीछे खड़ा कीजिए और कहिए कि वो पूरे जज्बात के साथ वो लाइनें पढ़े। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ सुनना है। कोई बनावटी एक्सप्रेशन नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, बस उन शब्दों को अपने कानों से होकर दिल तक जाने दीजिए, और जो असली रिएक्शन आपके चेहरे पर आए उसे रिकॉर्ड होने दीजिए। यकीन मानिए, कैमरे पर आपका वो सच्चा रिएक्शन, आपके बोले गए
हजारों डायलॉग से ज्यादा खूबसूरत हो। इसे रिकॉर्ड कीजिए, खुद देखिए और हाँ, मुझे कमेंट में आकर जरूर बताइएगा कि बिना शब्दों के खेलना कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही है ना। सीखते रहिए और कला को जीतते रहिए। मिलते हैं अगली फिल्म और एक नई मास्टर क्लास के साथ। नहीं

आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में दबकर पक जाते हैं, जब सदियों तक निभ जाते हैं।

से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं। लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

फरिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर एक मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते।

परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं अलग अलग, अलग अलग परछाइयों की

जो बरसों से बस गई है उसके सीने में जागती है तमाम रात, झील के सीने पर इठलाती बलखाती चलती यादों की लकीरें, जो मुझे न सोने देती।

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा।

जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पना, जिसे न आप बदल सकती हैं न मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ बंदी है। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। राजेश खन्ना नहीं रहे। 18 जुलाई 2012, राजेश खन्ना इस दुनिया फानी से कूच कर गए और कह गए, क्या फर्क है 70 साल और 6 मिनट में, मौत तो एक पल है। समान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे देश में मातम की लहर दौड़ गई। राजेश खन्ना ने आशीर्वाद में अंतिम

का जन्म 29 दिसंबर सन 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राजेश का असली नाम जतिन खन्ना था और अपने अंकल के कहने पे जतिन राजेश खन्ना बन गए। एक टैलेंट हॉन्ट के दौरान राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। 10,000 में से सिर्फ 8 लड़के ही चुने गए, उनमें से एक नाम था राजेश खन्ना।

राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत सन 1966 में रिलीज के लिए तैयार हुई, लेकिन उनको जीपी सिप्पी ने राज फिल्म में ब्रेक दिया। इस अदाकार ने सन 1969 से 1975 तक फिल्म आराधना और फिल्म दो रास्ते से अपनी कामयाबी की शुरुआत की। इस दौरान 15 सुपरहिट फिल्में दी और उन्हें सुपरस्टार का खिताब मिला। फिल्म आराधना के अलावा सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद रोटी, खामोशी और आपकी कसम जैसी फिल्मों ने कमाई के नए रिकॉर्ड

राजेश खन्ना को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 14 बार नामांकन हुआ था और 3 बार ऐसे बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। राजेश खन्ना ने उस जमाने की लगभग हर हीरोइन के साथ काम किया, हेमा मालिनी, मुमताज, तनुजा, आशा पारेख, वहीद रहमान, लीना चंद्रावरकर और शर्मिला टैगोर। हेमा मालिनी के साथ राजेश खन्ना ने 15 फिल्मों में काम किया, जबकि एक्ट्रेस मुमताज के साथ 8 सुपरहिट फिल्मों में काम किया।

लड़कियों के बीच राजेश खन्ना की मकबूलियत इस कदर थी कि लड़कियां राजेश खन्ना के फोटो के साथ शादी करती थीं और खून से उन्हें खत लिखा करती थीं। राजेश खन्ना की कामयाबी में संगीतकार आरडी बर्मन और गुलोकार किशोर कुमार का अहम योगदान रहा। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आरडी बर्मन ने 40 फिल्मों में संगीत दिया।

एक्ट्रेस मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ सुपरहिट जोड़ी के अलावा राजेश खन्ना का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। टीना मुनीम से प्यार की खबर के अलावा अंजू महेंद्र से उनके अफेयर की भी काफी चर्चा हुई। इन चर्चाओं पर खुद ही रोक लग गई जब अचानक सन 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली और ट्विंकल और रिंकी खन्ना की

पति के कहने पर राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने कुछ चुनाव भी लड़े। लाल कृष्ण अडवाणी को चुनाव में उन्होंने कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को

दोस्तों आपको याद होगा, राजेश खन्ना ने छोटे पर्दे पर भी 2001 में अपनी पराई और इत्तेफाक जैसे सीरियल में नजर आए और यह सिलसिला 2008 में सीरियल भाभी मां तक

राजेश खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री में काका के नाम से भी जाना जाता रहा। सुपरस्टार के दौरान राजेश खन्ना के लिए एक खास कहावत का इस्तेमाल हुआ करता था,

80 के दशक के अंत में राजेश की पहली पारी का अंत हुआ। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रहीं।

सन 1994 में राजेश खन्ना ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। 1994 में खुदाई, 1999 में आ अब लौट चले। 2002 में क्या दिल ने कहा और सबसे अंत में वफा सिनेमा घरों में आई।

सन 1991 में 25 साल इंडस्ट्री में पूरा करने पर उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। इन 25 सालों में राजेश खन्ना इंडस्ट्री में वाहिद एक हीरो बने रहे जिन्हें बतौर लीड रोल 106 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सन 1966 और 1975 के दौरान राजेश खन्ना की 35 फिल्मों ने गोल्डन जुबली का खिताब हासिल किया और सन 1966-91 के दौरान 22 फिल्मों ने सिल्वर जुबली खिताब हासिल किया।

फिल्म गीत गाया पत्थरों के ऑडिशन के दौरान जितेंद्र को राजेश खन्ना ने ही कुछ फिल्मी टिप्स दिए थे। इस तरह वी शांताराम ने जितेंद्र को पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों के लिए साइन किया। राजेश खन्ना ने एक ही फिल्म में डिंपल कपाड़िया के साथ काम किया। फिल्म थी जय शिव।

फिल्म आपकी कसम के दौरान सन 1974 में बीबीसी ने राजेश खन्ना पे एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जिसका टाइटल था बॉम्बे सुपरस्टार। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने कहा था कि महिलाएं राजेश खन्ना की दीवानी थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लंबी कतारों में घंटों तक खड़ी रहती थी।

0: आमतौर पे राजेश खन्ना की फिल्मों में अशोक कुमार, सुजीत कुमार, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, असरानी बिंदु, विजय अरोड़ा, रुपेश कुमार, दीना पाठक और एके हंगल जैसे मंचे कलाकार नजर आते थे। दोस्तों में शामिल रहे हैं राज बब्बर, जे ओम प्रकाश, प्रेम चोपड़ा, डी रामा नायडू और जितेंद्र। दोस्तों हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं।
1: अमीन साहब आदाब।
2: आदाब भैया, आदाब।
1: आज का प्रोग्राम समर्पित है राजेश खन्ना के नाम। राजेश खन्ना साहब के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आपकी।
2: पहले तो मैं इतना बता दूं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं चाहता था बहुत कि वहाँ स्मशान घाट पहुँचूं, लेकिन इत्तेफाक से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और मेरा बेटा गया मेरी तरफ से वहाँ, लेकिन अफसोस कि वो अंदर घुस ही नहीं पाया क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मैं क्या अर्ज करूं। और मतलब ये इससे पता चलता है कि राजेश खन्ना की यादें और उनकी उनका प्रेम अब तक लोगों के दिल में बसा हुआ है। मैं उसके बाद उनके चौथे पर गया था, कंडोलेंस मीटिंग थी और वहाँ कई लोगों से मुलाकात की, सबके चेहरे उदास थे। और एक गजब की चीज भी मैंने सुनी वहाँ, राजेश खन्ना की अपनी आवाज में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया कि किस तरह वो, ये पता नहीं किसका इंटरव्यू था, उसमें सिर्फ राजेश बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह वो स्टेज की दुनिया से आए और कैसे धीरे धीरे उन्होंने तरक्की की।
1: जी।
2: ये स्टेज पर काम करने वाली बात जो राजेश की थी, मेरा ख्याल है वो उनकी अदाकारी को संवारने निखारने में सबसे बड़ी बात थी। वो जब आए तो एक तैयार एक्टर थे, उनको एक्टिंग सीखनी नहीं पड़ी। हाँ, फिल्मों के लिए स्टेज और फिल्म में जो थोड़ा सा फर्क होता है वो एडजस्टमेंट उन्होंने पूरी तरह कर लिया और उसके बाद तो वो अपनी अदाओं से, अपनी खास हरकतों से, अपने खूबसूरत चेहरे से, अपनी मधुर आवाज से वो बस बढ़ते ही बढ़ते चले गए। मैंने उनकी कई फिल्मों में काम इसलिए किया ताकि मतलब इस तरह से कि मैं पब्लिसिस्ट उसका था रेडियो पर।
1: जी, जी।
2: और इस लिहाज से मेरी मुलाकात कई बार उनसे होती रही। एक इंटरव्यू सिर्फ मैंने उनका किया और वो कब, जब उनकी शादी होने वाली थी डिंपल कपाड़िया से,
1: 1973 में,
2: साल तो मैं भूल गया
1: जी, था। जी, जी।
2: और शादी से करीब 4 रोज पहले मैं अपना टेप रिकॉर्डर लेकर उनके घर पहुंच गया और उनसे खूब बातें हुई और उन्होंने कहा मुझे कि जब मैंने पूछा कि शादी के बाद क्या डिंपल काम करेंगे फिल्मों में, तो कहने लगे नहीं, वो तो बस ये बॉबी आखिरी फिल्म है उनकी और उसके बाद वो कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि पत्नी को घर में रहना और पति के साथ रहना ज्यादा अच्छा रहता है। मगर और उसके बाद वो रहने भी लगी उनके साथ, दो बेटियां भी पैदा हुई, मगर न जाने क्यों उसके बाद क्या हुआ कि बात थोड़ी बिगड़ी।
1: जी, जी।
2: और वही बात हुई जो कि बॉबी के गीत में बॉबी की हीरोइन डिंपल ने कहा था अपने हीरो ऋषि कपूर से कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं महके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो।
1: जी।
2: और वो चली गई महके और दोनों अच्छे कलाकार अच्छे लोगों के बीच एक दीवार सी बन गई। इस दीवार की वजह से आखिर तक, यानी राजेश खन्ना की के आखिरी दिनों तक

0: ये दोनों अलग रहे, और जब वो बहुत बीमार हुए, हॉस्पिटल में आना जाना शुरू हो गया, तो एक अच्छी पत्नी की तरह डिम्पल फिर उनके पास चली गई और उनकी देखभाल भी की, उनके हॉस्पिटल ले जाने लाने में, वहाँ से लाने में उनका और उनकी दामाद अक्षय का बहुत बड़ा हाथ था।
1: जी,
0: और इस तरह से मामला चलता रहा कि आखिर सांस रुक गई और एक बहुत बड़ा कलाकार जो था वो खत्म हो गया।
1: अमीर साहब, जिन दिनों आप सिलोन में थे उस वक्त कोई ऐसी कोई याद उनके साथ जुड़ी हुई है?
0: या तो फिल्म पब्लिसिटी के थ्रू रहा, या फिर वैसे दोस्ती के जरिए और उनके दोस्तों से दोस्ती के जरिए। मसलन आर डी बर्मन बड़े दोस्त थे उनके, और
1: किशोर कुमार
0: मेरे भी दोस्त थे भाई की तरह,
1: किशोर कुमार
0: भी
1: जी, जी, जी।
0: तो इन सब से मिलना और उनके बारे उनसे बात करना राजेश की, ये होता होता रहता था। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जो कि मेरे प्रोग्राम गीतमाला से ताल्लुक रखती है, और वो ये कि राजेश वैसे तो आते ही छाने लग गए थे और उनके गीतों ने भी धीरे धीरे काफी धूम मचानी शुरू कर दी थी, लेकिन आगे चलकर जब आराधना में उन्हें किशोर कुमार की आवाज मिली पहली बार, तब तक तो किशोर गाया करते थे सिर्फ अपने लिए या देवानंद के लिए, लेकिन आराधना में राजेश खन्ना के चेहरे पर जब किशोर कुमार की आवाज गूंजने लगी, उनके लब हिलने लगे किशोर की आवाज पर, तो ऐसा तहलका मचा कि बस करीब करीब सभी गीत टॉप हिट हो गए। और राजेश खन्ना न सिर्फ अपनी अदाकारी के जरिए बल्कि अपने खूबसूरत गीतों के जरिए भी लोगों के दिल में और गहरे उतरते चले गए।
1: कहा जाता है कि लड़कियां उनके फोटो से शादी करती थी, ऐसा?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी कि कुंवारी लड़कियों की तो वो फेवरेट थे ही, लेकिन बूढ़ी औरतों के यानी अम्मा नानियों का भी ये हाल था कि वो बड़ा प्यार करती थी, जब उनको अपना बेटा कहती थी, समझती थी, दुआएं करती थी उनके लिए, और छोटे बच्चे भी खूब मजा लेते थे उनकी अदाकारी का। तो वाकई वो पहले सुपरस्टार बने फिल्मी दुनिया के, यानी उनसे पहले तीन तो थे ही जो धूम मचा रहे थे, दिलीप और राज और देव, लेकिन उनके बाद जो सुपरस्टार कहलाए गए वो यही थे।
1: अमीन साहब, आखिरी दिनों में कभी आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला?
0: नहीं, मेरा तो ताल्लुक काफी वर्षों से बिल्कुल ही नहीं रहा था, बल्कि मेरा ही क्यों, किसी का भी ताल्लुक नहीं रहा था उनसे। मैंने देखा टीवी पर देखा कि एक बार वो किसी फंक्शन में आए थे और कुछ बोला था उन्होंने, और वो कविता जो उन्होंने दाग में बोली थी ना
1: जी, जी,
0: उसको एक नए अंदाज में जरा जोश के साथ पेश किया था, अमिताभ बच्चन कंपेयर कर रहे थे उस शो को।
1: जी, जी,
0: लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाया उनसे, बल्कि वो खुद अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान के लोगों से जरा दूर ही चले गए थे, एक हर्मिट से बन गए थे वो, और मुलाकातें लोगों की जरा कम ही होती थी, बीमार भी रहते थे। उनका चेहरा आपने देखा ही होगा, दाढ़ी तो थी और गोया दाढ़ी छुपा रही थी उनके चेहरे का मुरझाना, तो बहुत बहुत बीमार, बहुत बूढ़े से लगने लगे थे वो।
1: ये भी उन दिनों कहावत थी कि ऊपर आका और नीचे काका।
0: ये मैंने नहीं सुना, लेकिन ये सही है कि सब उन्हें काका कहते थे। मैंने उन्हें काका नहीं कहा कभी, क्योंकि वो थे मुझसे जरा छोटे
1: जी,
0: तो मैं राजेश जी का कहा करता था उनको।
1: अमीन साहब, किसी गाने के जरिए आप उनको याद करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के लिए?
0: जिंदगी का सफर है ये ऐसा सफर, कोई जाना नहीं कोई समझा नहीं, बहुत दिल को छू लेने वाला गाना था ये, और मेरा ख्याल है उन्हें उनकी याद में ये गाना जरूर बजाना चाहिए।
1: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: क्या आपको मालूम है राजेश खन्ना के आखिरी अल्फाज क्या थे?
1: किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। लेकिन जो भी कहना चाहूंगा, जिन अल्फाजों में भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्हें दिल की सच्चाई होगी, मेरी ईमानदारी होगी, मेरा जमीर होगा। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि चलिए इस बारे में आपसे मुलाकात हुई। किसे अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, या पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपका एक हिस्सेदार मैं भी हूं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आपका ये प्यार था, आप वहां पर मौजूद हुए उतनी भारी संख्या में, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मेरा बहुत बहुत सलाम।
0: जाती तौर पे राजेश खन्ना से मेरी मुलाकात पहलगाम कश्मीर में हुई थी फिल्म रोटी की शूटिंग के दौरान, और मुझे आज भी याद है। कश्मीर के दिल फरीब और हसीन मनाजिर, खूबसूरती से वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। मेरी और उनकी बातचीत के दौरान वो अपने सिर को अपने ही अनोखे अंदाज में हिलाते रहे।
2: अच्छा, ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन।
0: और वही उनका अंदाज हमें उनकी फिल्मों में देखने को मिलता रहा।
2: गर्मियों के निहार है तो तुमको मुझसे प्यार है।

2012 दिन के 1:40 पे मौत ने दस्तक

मौत आई राजेश को अपने साथ ले गई। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता, पर यह भी अपनी जगह सही है, आनंद मरते नहीं। पसीना मौत का माथे पे उतरा है, आई न लाओ हम अपनी आखिरी तस्वीर उतारेंगे।

0: पेश है कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान हैं कैसर सिस्टर्स, जरताज कैसर, जरनिगार कैसर और एहसास कैसर। प्रस्तुत करेंगे भरत सपोरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज आपके लिए लाया हूं कार्यक्रम परिचर्चा। परिचर्चा में वैसे तो हम स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं मेहमान को, पर आज के इस कार्यक्रम में हम थोड़ा अम्बाला से दूर चलते हैं। आज हम चलते हैं दिल्ली, और आपको पता है कि अगर हम दिल्ली चलेंगे तो हम किसी टेलीफोन के या मोबाइल के माध्यम से जो हमारे सुनने वाले हैं उनको कनेक्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं मिलवा देता हूं जसवंत सिंह मल्होत्रा जी से। जसवंत सिंह मल्होत्रा जी दिल्ली में एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है फिलहार्मोनिक सिंगर्स फाउंडेशन न्यू दिल्ली, और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं जसवंत सिंह मल्होत्रा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के टाइम में जसवंत जी ने बहुत सारे बडिंग और अपकमिंग सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया और उसके साथ उनको एंगेज किया ताकि वो किसी परेशानी में ना रहे, अकेलेपन में ना रहे। और आइए आज हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में जसवंत सिंह मल्होत्रा जी का, जो इस समय हमसे जुड़े हैं दिल्ली से। जसवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो वितस्ता के इस स्टूडियो में।
2: भारत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।
1: नमस्कार,
2: मैं जसवंत सिंह मल्होत्रा मुखातिब हूँ
1: जी
2: आप सबसे।
1: जी जसवंत जी, आप हमसे कई साल से जुड़े हैं और आपके साथ जितने भी अपकमिंग और अच्छे सिंगर्स जुड़े हैं उनके हमने कुछ समय पहले लाइव शोज भी किए हैं, पर आज हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि जो रेडियो वितस्ता एक वेब रेडियो था, अब ये अपग्रेड होगी एक कम्युनिटी रेडियो, यानी FM स्टेशन बना है। हमारी फ्रीक्वेंसी है 90.0 MHz। तो आपको कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए।
2: मैं तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ रेडियो वितस्ता को FM रेडियो बनाने, 90 Hz का FM रेडियो बनाने के लिए, और सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस अच्छी चीज को सर अंजाम दिया। पर मैं ये कहूंगा कि रेडियो वितस्ता ने पिछले कई सालों में, 4 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं
1: जी।
2: हमारे जो बच्चे हैं फिलहार्मोनिक क्लब के, उनको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स दिए, और आपके फेसबुक पेज के थ्रू ये बच्चे बड़े मशहूर भी हो गए हैं, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि आपके बारे में आप अपनी ही इंट्रोडक्शन खुद ही दे दीजिए।
2: मैं जसवंत सिंह मल्होत्रा, बेसिकली IIT BHU से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम किया और चीफ जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हो गया
1: जी।
2: क्योंकि गाना मेरा एक पैशन था, तो उसको मैंने अपने खाली समय को अच्छी तरह से प्रयोग करने का साधन पाया और अपने पैशन को मैं पूरा कर रहा हूँ। लगभग 5 साल पहले मैंने फिलहार्मोनिक सिंगर्स क्लब का आगाज किया, शुरू किया। अब वो फिलहार्मोनिक ट्रस्ट में भी तब्दील हो गया है, जिसमें ट्रस्ट के थ्रू हम गाने के अलावा मैंने अच्छे अच्छे यंग और टैलेंटेड सिंगर्स को खोजा कोविड के दौरान, और उनको ट्रेनिंग उनकी बाकायदा शुरू करवाई, और अच्छे अच्छे बड़े शोज में हम लोग मिलकर दिल्ली में करते हैं, जिसमें हमारे जो सिंगर्स हैं, यंग चिल्ड्रेन हैं, टैलेंटेड चिल्ड्रेन हैं, उनको लोग अपने प्रोग्राम्स में मौका दे रहे हैं।
1: जसवंत सर, आप ये बताएं कि आप फिलहार्मोनिक क्लब तो चलाते ही हैं और इसके बगैर भी आप बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में उनके बारे में भी बता दीजिए।
2: कोविड जब हुआ दो वर्ष पहले, तो ये हाल हो गया था कि लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा था, जो डिस्ट्रीब्यूट थे, जिन लोगों को दिहाड़ी के मजदूर थे। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि जितने भी कोविड के मरीज हैं, उनका उनसे संपर्क किया जाए और उनके घर पे खाना पहुंचाया जाए।
1: बहुत अच्छी
2: उसका बात। कोई पैसा नहीं लेते थे हम लोग, उनके घर खाना पहुंचाया लगातार जब तक उनकी डिमांड थी। और साथ ही साथ हमने एक माँ की रसोई के नाम से एक लंगर शुरू किया।
1: जसवंत सर, आपके लिए और आपकी टीम के लिए आज आप इस जो हमारा ये कार्यक्रम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके लिए आज आपने किस सिंगर को चुना है जिनसे हम बात करेंगे?
2: आज के प्रोग्राम के लिए हमने चुना है कैसर सिस्टर्स को। उनने बड़ी बहन जरताज कैसर 17 साल की, उससे छोटी बहन जरनिगार कैसर 13 साल की, और सबसे छोटी बहन एहसास कैसर बेबी वो 9 ईयर्स की हैं। और ये तीनों बच्चे लगातार कई सालों से संगीत सीख रहे हैं। छोटी वाली एहसास तो 6 साल से संगीत सीख रहे हैं और ये बड़े निपुण हैं अपने गायकी में, और इनको दिल्ली के बहुत सारे प्रोग्राम्स में शिरकत मिल रही है जिसके लिए फिल हार्मोनिक क्लब को मैं खुद बधाई देता हूँ।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत सर। और मैं चाहूंगा कि अब हम जो हमारे आज के मेहमान है उनसे बात करेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: शुक्रिया जनाब,

0: आइए आज हम आप सबको मिलाते हैं कैसर सिस्टर्स से, और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं जरताज कैसर का। जरताज, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जरताज, आप मुझे ये बताइए कि आज कैसर सिस्टर्स में आपके साथ कौन कौन है?
1: आज मेरे साथ कैसर सिस्टर्स में मेरी दो छोटी बहनें हैं, एक है जरनिगार कैसर और एक है एहसास कैसर।
0: जी, मैं आप लोगों से एक लाइव शो में कुछ साल पहले मिला हूं, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम रेडियो पे आपका जो कार्यक्रम है वो सुन रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। जरताज, आप मुझे सबसे पहले मुझे और हमारे जो श्रोता है उनको आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें।
1: जी, मेरा नाम जरताज कैसर है और मैं 17 साल की हूँ, और मैं दिल्ली में शोज वगैरह करती हूँ, और मैंने संस्कृत में भी काफ़ी प्लेबैक सिंगिंग कर रखी है, और मैं 2019 में गोल्डन वॉइस ऑफ दिल्ली एनसीआर की विनर थी, और अभी रिसेंटली मैंने लखनऊ फिल्म क्लब के द्वारा एक गज़ल का कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, तो मैं उसकी विनर रह चुकी हूँ 2022 में।
0: जरताज, आप संगीत सीखती हैं? अगर सीखती हैं तो कहाँ से सीखती हैं?
1: जी, मैं पंडित किशोर बैनर्जी से पिछले 6-7 साल से क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ, और अभी मैंने कुछ 2-3 महीने पहले गजल की तालीम लेना शुरू किया है।
0: मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गजल और जो हम गीत या कोई गाना गा लेते हैं, इन दोनों में खास अंतर क्या होता है?
1: अगर जैसे कोई बॉलीवुड सॉन्ग्स, मतलब गजल तो वो चीज हो गई जो मतलब उसमें बस शेर और शायरी वगैरह, और उसको बहुत ही मतलब आराम से गाया जाता है, उसमें काफी चीजें होती हैं जो हमारी खुद की होती है, हमारी खुद की इनोवेशंस होती हैं, और बॉलीवुड सॉन्ग्स को वो थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है, मतलब गजल भी होती है बॉलीवुड सॉन्ग्स में, बट वो एक बिल्कुल ही अलग चीज हो जाती है। गजल में हमारे पास काफी टाइम होता है, और हम अपने मतलब एक्सपेरिमेंट्स उसमें शो करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसके लिए मतलब क्लासिकल की तालीम होना भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात है, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से जरताज और आपकी दोनों बहनों जरनिगार और एहसास को। उनसे बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इन दो बहनों में से बड़ी हैं, तो एक तो आप रियाज करती हैं, तो क्या रियाज करते हुए जो आपकी छोटी सिस्टर एहसास है, क्या रियाज करते भी वो तंग आपको करती है कि नहीं करती है?
1: कभी कभी करती है।
0: तो आप क्यों ना ऐसा करें कि जब आप रियाज करते हैं उनको भी रियाज पे लगाएं, ताकि वो भी आपको तंग ना करें और रियाज भी हो जाए।
1: जी जी, हम लोग ज्यादातर तो यही करते हैं कि मतलब अगर मैं क्लासिकल का रियाज कर रही हूँ तो इसको दूसरे रूम में भेज देती हूँ, ताकि वो अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह जो भी है उसकी प्रैक्टिस कर ले, और हमारा मतलब ऐसे होता है, एक साथ हम बहुत कम बैठते हैं, अगर हमें तीनों को एक साथ कोई रिकॉर्डिंग करनी हो या कुछ ऐसा गाना तैयार करना हो, हम तभी एक साथ बैठ के रियाज करते हैं।
0: जरताज, आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे श्रोताओं को आज सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगे?
1: जी, मैं एक लता मंगेशकर जी की एक बहुत ही खूबसूरत गजल है, हम है मताए कोचा, वो सुनाना चाहती हूँ।

0: शुक्रिया।
1: बहुत खूब बहुत खूब जरताज। और मैं देख रहा हूँ कि जब हम आप लोगों से एक शो में मिले थे तब से आज तक आपकी आवाज बहुत निखर गई है। और जब आपने कहा कि आप गजल सीखना भी आपने शुरू कर दिया है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी आवाज है उसके अलग अंदाज को आप समझ पाते हैं और आप उसको प्रस्तुत कर पाते हैं। जरताज, आपसे जानना चाहूंगा कि आप फिल हार्मोनिक ग्रुप के साथ जुड़े हैं तो जसवंत सिंह मल्होत्रा जी का क्या रोल रहता है आप जैसे बडिंग और अपकमिंग कलाकारों के लिए, सिंगर्स के लिए?
0: जी, जसवंत अंकल का तो हमारे मतलब हमारे सिंगिंग करियर में काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने मतलब हमारे पहले उतने शोज वगैरह नहीं होते थे, पर जब से हमने वहाँ पे परफॉर्म वगैरह करना शुरू किया तो बाकी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह आते थे सुनने के लिए, उनको हमारी आवाज़ पसंद आती थी तो वो हमें अपने शोज में इन्वाइट करते थे। और इससे मतलब हमारा मतलब काफ़ी ज़्यादा ये चेंज आया हमारे सिंगिंग करियर में। और वो मतलब हमें बहुत मतलब यूनिक यूनिक गाने जो मतलब किसी ने सुने भी नहीं है इस टाइप के गाने हमें प्रिपेयर करने के लिए देते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: हम भी उनको इस चीज़ के लिए साधुवाद हमेशा देते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई भी व्यक्ति हमें हाथ पकड़ के आगे की तरफ ले जाता है और दुनिया के सामने ले आता है तो सबसे अच्छी बात यही होती है। संगम कला ग्रुप के साथ भी आप जुड़े हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं।
0: जी, संगम कला ग्रुप में तो जब मैं फाइनलिस्ट थी तो ये कुछ 2-3 साल पहले की बात है, और इस साल तो मतलब हमने उसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया, जो था मतलब 2-3 साल पहले ही था। जी, जर्नीगार ने पिछले साल इसमें पार्टिसिपेट किया था तो वो संगम कला ग्रुप का जो दिल्ली स्टेट फाइनल था उसकी विनर बनी थी।
1: जरताज, आपकी उम्र में जो इस समय सिंगर्स बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उसके बाद कोई और जो आपका मनपसंद गीत हो वो आप हमें और हमारी श्रोताओं को सुनाएं।
0: जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत बचपन से सीखना शुरू किया था, जब मैं 5-5.5 साल की थी तो मेरे बर्थडे पर ही मेरे पापा ने मेरा एडमिशन म्यूजिक स्कूल में करवाया था एक, तो मैं तब से सीख रही हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, और मतलब खुद का एफर्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुद नहीं चाहेंगे कुछ मतलब करना तो मतलब कोई हमें कितना भी ये कर ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमारा खुद का शौक होना चाहिए उसके लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस है और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, मैंने गज़ल सुनाई थी अभी तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया सुना दो, कोई नया गाना।
1: हमारे श्रोता भी खुश हो जाएंगे आपकी आवाज़ में सुन के।
0: जी जी, तो मैं गुरु मूवी से एक बहुत ही फेमस गाना है माया माया, मैं वो सुनाने जा रही हूँ।
1: आप शुरू कीजिए।

रात का एक खौड़ी चांद की, चाहे तो चूम लेंगे तू थोड़ी चांद की, एक चांद की कश्ती में चल पार उतरना है, तू हल्के हल्के के ना दरिया ना चल के।

0: बहुत खूब,
1: शुक्रिया।
0: बहुत खूब, बहुत खूब जरताज। और मैं जरताज आपको पहले भी ये कहा कि आपको अपना रियाज करना है, अपनी जो तालीम है वो लेनी है, और साथ में आपको एहसास का और जर्नीकार का ख्याल भी रखना है, क्योंकि आप बड़ी हैं तो आपके लिए जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। हमारी ओर से, रेडियो विद अस्ता परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: आइए अब हम जरनिगार से बात करते हैं।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते जरनिगार, आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। और जब हमने शो किया था तब आप आज से थोड़ी छोटी थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। कैसा लग रहा है आपको आज मेरे साथ इस रेडियो शो में बात करके?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और बात करने का मौका दिया।
0: जरनिगार, मैं आप तीनों बहनों को हमेशा जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो मैं उसके साथ जुड़ता हूँ, और प्रभु करे आप तीनों बहनों को अपनी मेहर वो आपके ऊपर रखे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। सबसे पहले जरनिगार, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं।
1: मैं जरनिगार कैसर हूँ, दिल्ली से हूँ और मैं अभी 13 साल की हूँ। रिसेंटली अभी मैं संगम कला ग्रुप के दिल्ली स्टेट लेवल की फर्स्ट रनर अप बन चुकी हूँ और मैंने अपने स्कूल को भी स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है 3 कैटेगरीज में।
0: जी बहुत अच्छी बात है। और आप जो मैं देख रहा था, आप फर्स्ट रनर अप खोज नए फनकार की भी हैं, तो कैसा लग रहा है कि जब आप एक समूह के सामने जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जब आपको गाना होता तो कैसे आप फोकस अपने गाने पे करते हैं?
1: कोई राज नहीं होता है, बस हमें सोचना, कॉन्फिडेंस पहले से हम लोग अभी प्रैक्टिस इतनी हो गई है गाते स्टेज पे कि हम लोग को अब उतना वो डर नहीं लगता और हम लोग नर्वस नहीं होते हम लोग।
0: Okay.
1: तो प्रैक्टिस से हो जाता है।
0: और जो आपको इस समय FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर सुन रहे हैं, आप उनके लिए कौन सी पहली प्रस्तुति आज देना चाहेंगे?
1: मैं अभी आपको लता मंगेशकर जी के एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाने जा रही हूँ, नैनों में बजरा छाए।
0: जी शुरू कीजिए।

0: वाह
1: शुक्रिया,
0: वाह वाह वाह जरनिगार, बहुत अच्छे से आपने इस गाने को निभाया, क्योंकि जब कोई भी गाना लता मंगेशकर जी ने गाया हो तो उसको गाने के लिए मैं बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत आपके इस काम में दिख रही है। अच्छा, मैं आपसे एक अलग से सवाल करना चाहता हूँ। आपकी बड़ी बहन है जरताज और छोटी है एहसास, आपको सबसे ज्यादा तंग घर में कौन करती है, जरताज या एहसास?
1: एहसास।
0: अच्छा, एहसास वो रियाज भी करती है और आप दोनों को तंग भी करती हैं?
1: जी, दोनों ही करती हैं।
0: तो क्या आप उनको डांट लगाती हो या प्यार से समझाती हो?
1: डांट लगाती हूँ लेकिन वो सुनती नहीं है, फिर भी तंग करती है।
0: चलिए, अभी हम एहसास के साथ भी बात करेंगे, बट पहले अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि जैसे एक बच्चा सपोज सिंगिंग में वो जाना चाहता है, उनके उस काम में एक सिंगर, अच्छा सिंगर बनने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो आप अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, और मतलब जो चीज हमें चाहिए उसके लिए हम लोग, उनने कभी मना नहीं किया, और म्यूजिक के फील्ड में हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं हमें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं कर पाते सब, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने हम लोग के लिए सब कुछ किया।
0: बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे भी कहा जाता है कि हमारे जो बड़े जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे माँ और हमारे पिता होते हैं, और मैं ये जरूर चाहता हूँ, हर एक बच्चे को यही कहता हूँ कि जब तक हम भगवान को, अल्लाह को, किसी को भी हम देखें, उससे पहले हम अपने माता पिता को देखते हैं, और उनकी इज्जत और उनका सहारा हमेशा हर एक बच्चे को मिलता रहे, और इसके लिए हम अपने ओर से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं।

0: हेलो नमस्ते एहसास, कैसे आप? कैसी हैं?
1: नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। और हमारे जो सुनने वाले हैं वो बहुत उतावले हो रहे हैं एहसास को सुनने के लिए। वैसे तो हमने उनको बोला है कि हम एहसास से बात करेंगे, बट आपका नाम है एहसास कैसर। जितनी एहसास बड़ी है, नाम उससे बड़ा नहीं लग रहा, या अब एहसास बड़ी हो गई है?
1: मैं बड़ी हो गई हूँ।
0: मैंने आपका एक गाना देखा है जो आपने जसवंत अंकल के साथ गाया था, और आपने काली स्पेक्स पहनी थी। वाह वाह, क्या कमाल का गाना था वो। और शरारतें कौन करता है आपके घर में, जरताज या जरनिगर?
1: अगर ज्यादा शरारती की बात हो तो मैं ही करती हूँ, लेकिन दोनों में से जरताज को कह सकते।
0: चलो अच्छा, ये बताओ कि जब जरताज और जरनिगार घर में रियाज करते हैं, तो क्या आप गौर से और ध्यान से उनको रियाज को देखते हैं, सुनते हैं?
1: मैं ज्यादातर सुनती हूँ, बाकी कभी कभी शरारती करते
0: जो बच्चा शरारत नहीं करेगा वो बच्चा कैसा हो गया? तो इसलिए एहसास शरारतें बरकरार रखनी है, पर जब रियाज करना है तब जो फोकस है वो रियाज पे करना है। और आपके बारे में जो मेरे पास जानकारी है, बहुत सारे काम आपने किए हैं, बहुत सारे शोज आपने किए हैं, तो हमारे रेडियो मित्रता के सुनने वालों को आप सबसे पहले क्या सुनाएंगे?
1: मैं आशा भोसले जी का एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगी, सत्तूबा।
0: हाँ, आप शुरू कीजिए।

0: बहुत खूब एहसास, बहुत खूब एहसास। वाकई आपने कहा कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तो 9 साल की एहसास कैसर वाकई बड़ी हो गई। इतना मुश्किल गाना आपने लिया और आपने बखूबी उसको पेश किया हमारे श्रोताओं के लिए। अच्छा मुझे एहसास एक बात बताओ, जब आप स्कूल जाती हैं, आपके वहाँ पर जो दोस्त हैं, क्या आपके दोस्त आपको स्कूल में भी कहते हैं कि एहसास कोई गाना सुनाओ?
1: कभी कभी कहते हैं।
0: और आप सुना भी देते हो?
1: हाँ।
0: अच्छी बात है, क्योंकि एक कलाकार जो होता है उसके लिए कोई स्टेज की जरूरत नहीं होती है, जहाँ पर वो कलाकार है वहीं से स्टेज की शुरुआत होती है। ठीक है बेटा
1: जी।
0: अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जिंदगी में आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ तक पहुँचना है आपने?
1: मेरा ये लक्ष्य है कि जब मैं बहुत बड़ी स्टार बनूं और सब लोग मुझे मेरे गाने से, मेरे आवाज से पहचाने।
0: और अगर उस समय जब मैं आपके सामने आऊं, तो क्या मुझे आपको मिलने का मौका मिलेगा जब आप बहुत बड़ी स्टार बनी होंगी?
1: जी जरूर।
0: मैं ये चाहूंगा कि अब आप तीनों बहनें साथ आएं, और मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के समापन पर हम तीनों बहनों से एक गाना सुने। उससे पहले एहसास मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप मम्मी पापा को क्या कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा बचपन से ही बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा है कि तुमको जो भी करना है तुम कर सकती हो, अगर किसी फील्ड में जाना है तो उसमें भी कर सकती हो। और उन्होंने कहा है कि जो भी तुम्हें म्यूजिकल चीजें खरीदनी हो वो हमें बताना, हम लोग थोड़ा सा भी लेट नहीं करेंगे। और हमेशा हमारी बहुत मदद की है, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मेरे पापा भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है।
0: हमारी ओर से, रेडियो विदस्ता परिवार की ओर से आप तीनों बहनों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि जरनिगार और जरताज भी अब आपके साथ ज्वाइन करें। जरताज आप मुझे ये बताएं कि इस छोटे से कार्यक्रम में, अंतिम दौर में, आप तीनों बहनें हमें और हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना पसंद करेंगे?
2: हम अभी आपको एक ट्रिपलेट सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं, देखो मौसम क्या बाहर है।
0: शुरू कीजिए।

0: शुक्रिया।
1: वाह वाह, आप लोगों ने तो मौसम ही बदल दिया, जैसे हम कहते हैं कि जरताज जरनिगार एहसास, आपने तो मौसम बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, और इस कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूं। और हमारी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, FM 90.0 MHz की ओर से, आप तीनों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका करियर ऐसे ही चलता रहे, आपकी आवाज ऐसे ही खुशनुमा होती रहे और लोगों को एंटरटेन करते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: जी शुक्रिया,
2: नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान थे कैसर सिस्टर्स, जरताज कैसर, जरनिगार कैसर और एहसास कैसर। रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार। निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सुपोरी।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेरी निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुक्रिया।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हमसफर जिंदगी का।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली,

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: मेरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल न जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: घी डालच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विकसता, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आप सभी का स्वागत है और आज शुक्रवार की ये दोपहर ठीक 2 बजे का वक्त है, यानी वो वक्त जब हम सुनते हैं आपके दिल की बात, आपकी जुबान से नहीं बल्कि आपके भेजे हुए गानों से। जी हाँ, ये है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां हर गाना किसी की कहानी है, किसी का इंतजार है और किसी की मुस्कुराहट है, तो किसी की आंख में छुपा हुआ एक आंसू भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका रेडियो हमसफर और रेडियो दोस्त भारत सोपोरी,
1: और मैं हूँ अन्नू। हम दोनों आज फिर हाजिर हुए हैं आपकी भेजी हुई फरमाइशों की उस पोटली को खोलने के लिए जो इस हफ्ते हमारे पास पहुंची है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर, सुरों का, जज्बातों का और आपकी अपनी फरमाइशों का।
0: दोस्तों, हर शुक्रवार की ये दोपहर कुछ खास होती है क्योंकि इसमें बसती है आपकी आवाज, आपके जज्बात और वो गाने जिन्हें आपने सिर्फ सुना नहीं बल्कि जिया है। वितस्ता के इस मंच से आज फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप हमें अपनी फरमाइशें भेजते हैं, अपनी भावनाएं भेजते हैं, अपने पल हमारे साथ बांटते हैं। तो आइए आज की इस महफिल को सजाते हैं आपके सुरों से।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने भरत जी। तो आज है एक प्यारी सी दोपहर, हल्की सी धूप और साथ में आपके पसंदीदा गाने, इससे बेहतर शुक्रवार भला और क्या हो सकता है। आज मैं फिर आपके साथ हूँ इस खूबसूरत सफर पर, जहाँ हर फरमाइश के पीछे एक कहानी छुपी है। किसी ने भेजा है पुराने प्यार की याद में, किसी ने भेजा है अपनी माँ के लिए, तो किसी ने बस यूं ही दिल हल्का करने के लिए। तो आइए दोस्तों, आपकी नजर ये पहली फरमाइश जो आई है कुमार हेडा सहारनपुर से। भेजने वाले श्रोता है मसरूर हसन, शाइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सदाम। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कन्यादान से गीत। गीत के बोल हैं, मिल गए आज मेरे सनम। इस गीत को अपनी मधुर वाणी से सजाया है लता जी ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है दयालबाग अंबाला कैंट से, भेजने वाले श्रोता है हनी और अनिल। ये सुनना चाहते हैं फिल्म लैला मजनू से गीत। गीत के बोल है रेशमी पाजेब की झनकार। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इनका।

इसी के साथ लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक बार मुस्कुरा दो से गीत। गीत के बोल हैं, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। इस गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

जी हाँ श्रोताओ, आप सभी के नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है पी एस नहावकर, ये सुनना चाहते हैं फिल्म आसरा से गीत। गीत के बोल है नींद कभी रहती थी आंखों में। इस गीत को आवाज दी है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। पी एस नहावकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर। और साथ में ये हम सभी को नमस्कार भेज रहे हैं। हम सबकी ओर से आपको और सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा।

इसी के साथ एक और फरमाइश जो आई है गांव जुगुड़ी जिला यमुनानगर से, भेजने वाले श्रोता है रणधीर भांगड़। ये सुनना चाहते हैं फिल्म रेशम की डोरी से गीत। गीत के बोल हैं बहना ने भाई की कलाई पे। इस गीत को आवाज दी है सुमन कल्याणपुर ने। रणधीर भांगड़ के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनराज। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप भी किसी पुरानी हिंदी फिल्म का गीत, हरियाणवी या पंजाबी गीत सुनना चाहते हैं, आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर। आपको लिखना होगा उस फिल्म का नाम, गीत के बोल और अपना नाम, कहां से आप लिख रहे हैं और आपके सभी दोस्तों या रिश्तेदारों के नाम जो उस गीत को सुनना चाहते हैं। आप ये जानकारी हमें भेजिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7054131010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। आप ये कार्यक्रम हर शुक्रवार को दिन के 2 बजे सुनते हैं और इसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे होता है। इसके साथ ही लेता हूं अगली फरमाइश जो हमारे पास एक फोन कॉल के माध्यम से आई है और ये कॉल हमारे पास आया है मंगत राम की ओर से, महेशनगर अंबाला कैंट से। इनके साथ सुनने वाले श्रोता हैं वीरेन। ये सुनना चाहते हैं फिल्म धर्मा से गीत। गीत के बोल है राज की बात कह दूं तो। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने। आज हम कुछ संदेश देना चाहते हैं मंगत राम जी को। जानकारी हमें मिली है कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है, आप जल्दी से अच्छे हो जाएं और साथ ही आपको बहुत सारा प्यार और नेक ख्वाहिश है। आपकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना में कुछ पंक्तियां आपके लिए। आपकी मुस्कान से ही सजता है ये मंच हमारा, आपके जल्द स्वस्थ होने का इंतजार है हमारा। हर दुख हर बीमारी अब दूर हो जाए, आपकी जिंदगी में फिर से खुशियों का सवेरा आए। अपना ख्याल रखें और आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा नगमा।

0: इसी के साथ एक और फरमाइश जो आई है धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी, नुशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म चरस से गीत। गीत के बोल है आजा तेरी याद आई। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी, लता जी और आनंद बख्शी जी ने। आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा गीत।
1: इस गीत के साथ हम आपको छोड़े चले जा रहे हैं और आपसे चाहेंगे अनुमति ताकि अगले प्रोग्राम को तैयार कर आपके साथ फिर रूबरू हो सके। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो वितस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो वितस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी, मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को सवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे, तुम्हें अगर इश्क है इससे, तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र, 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति। पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अंबाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अंबाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
0: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
0: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल न जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विथस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: भारत पर्व के अंतर्गत पेश है कार्यक्रम जन्माष्टमी पर, प्रस्तुत करेंगे आज ही किरणी।

माखन चोर नंद किशोर बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्णा हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी, आवो उनके गुण गाए, सब मिलके जन्म अष्टमी मनाए। सभी सुनने वालों को मेरा जय श्री कृष्णा। भारत के पर्व का एक नया एपिसोड लेकर मैं हूं आपके साथ किरणी। आज का हमारा विशेष टॉपिक है जन्म अष्टमी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णाष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण युगो युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वह कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो वह कभी ब्रज के नटखट कान्हा।

मान्यता है कि जन्माष्टमी व्रत का विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। उस दिन पूजा में सभी प्रकार के फलाहार, दूध, मक्खन, दही, चंदन, रोली, गंगाजल, मिश्री तथा अन्य सामग्री से भगवान को भोग लगाया जाता है। कन्हैया की महिमा, कन्हैया का प्यार, कन्हैया की श्रद्धा, कन्हैया से संसार।

श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो बहुत अत्याचारी था, जो देवकी का भाई था। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का

भगवान विष्णु के आठवें अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया तब भगवान विष्णु ने ही वसुदेव को आदेश दिया कि वह श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचाए, जहां वो अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। तभी से उनके जन्मदिन की खुशी में हर साल जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। गोकुल में जिसने किया निवास उसने गोपियों का संग रचा इतिहास, देवकी यशोदा जनकी मैया ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया।

जन्माष्टमी के दिन खास तौर पर मंदिरों को सजाया जाता है। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का भी आयोजन होता है। भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी का विभिन्न स्वरूप देखने को मिलता है। नंद के घर आनंद ही आनंद भयो, जो नंद के घर गोपाल आयो। जय हो मुरलीधर गोपाल की, जय हो कन्हैया लाल की।

दही हांडी की प्रथा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात से संबंध रखता है। दुष्ट कंस द्वारा अत्याचार स्वरूप सारा दही और दूध मांग लिया जाता था। इसका विरोध करते हुए श्री कृष्ण ने दूध दही कंस तक न पहुंचाने का निर्णय लिया। इस घटना के उपलक्ष्य में दही हांडी का उत्सव मटके में दही भरकर मटके को बहुत ऊंचाई पर टांगा जाता है तथा फिर युवकों द्वारा उसे फोड़कर मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन देश के अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता में बाल गोविंदा भाग लेते हैं। बाल गोविंदा द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। नटखट नटखट माखन चोर, खींचे सबको अपनी ओर। गलियों में अब मच गया शोर, बांसुरी बजाए नंद किशोर। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर।

तेरी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बिरज का बाका।

चिल्लाओगी तब गोरी जब उलट देगा तोरी गगरी आके पीछे डगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, हो आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी।

गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का पाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बिरज का पाका संभाल तेरी।

श्री कृष्ण की प्रमुख जीवन लीला के बारे में बताऊंगी। श्री कृष्ण बालपन के कारनामों को ही देखते हुए इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि वह धरती पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवतारित हुए। श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सूफी संतों के दोहों में राधा तथा अन्य गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम व वियोग लीला का बहुत सुंदर चित्र प्राप्त होता है। कृष्ण ने कर्म संन्यास योग के बारे में भी बताया है। कंस के वध के बाद कृष्ण द्वारकाधीश बने। द्वारका के पद पर रहते हुए वह महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने तथा गीता का उपदेश देकर अर्जुन को जीवन के कर्तव्यों का महत्व बताया और युद्ध में विजय भी दिलाई। प्रेम का सागर लिखो या चेतना का चिंतन लिखो, प्रीति की गागर लिखो या आत्मा का मंथन लिखो, रहोगे तुम फिर भी अप्रभाषित चाहे जितना लिखो, ज्ञानियों का गुंथन लिखो या गाय का गवाला लिखो, कंस के लिए विष लिखो या भक्तों का अमृत प्याला लिखो, रहोगे तुम फिर भी अप्रभाषित चाहे जितना लिखो, पृथ्वी का मानव लिखो या निर्लिप्त योगेश्वर लिखो, चेतना चिंतक लिखो या सतपद देवेश्वर लिखो, रहोगे तुम फिर भी अप्रभाषित चाहे जितना लिखो।

अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैं आपको गीता जी का एक संदेश सुनाती हूँ। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न ही मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है।

0: आप तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी, इनका अंत निकट है।
0: तथास्तु।

0: के दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुँचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए। बोली जनता, बोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा,

एक नए एपिसोड में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे आज्ञा दीजिए, ये कामना करते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय राधे कृष्ण।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम जन्माष्टमी के उपलक्ष पर। इसको पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कुमार, रिकॉर्डिंग व निर्देशन भारत सोपोरी। रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से सभी सुनने वालों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

जी श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम प्रसारण करते हैं अम्बाला छावनी से और ये सामुदायिक रेडियो स्वीकृत हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। और हम बात करते हैं अम्बाला की, और अम्बाला को हम चाहते हैं कि आप सभी के सहयोग से इसको विश्व पटल पर रखा जाए। आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज रात 9 बजे हम आज आपसे बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर, और तब तक आप सुनते रहिए हमारे प्रसारण और अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तब तक आप सुनिए हमारे प्रसारण। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

चलते चलते तुम्हारी दुआओं का असर देखेंगे और सरी रहा अपने इंतजार को महफूज रखेंगे अपने महबूब के लिए, उस महबूब के लिए जो हरदम मेरे साथ मेरे पास रहता है मेरे साए की तरह। तुम्हारे कुछ ख्वाबों ने एक मुद्दत के बाद दिल में क्यों आज आस जगाई है कि तुम्हारी सांसें तुम्हारी धड़कनें मेरे आने वाले कल का नसीब हैं। हमारे हाथ भी उठते हैं अब तुम्हारी दुआओं में जब मेरे कारवां में तुम्हारा साया मेरे साए के हमराह इस रेतीले सफर में मील के पत्थर की तरह रह गुजर में शामिल तो होता है पर रूबरू नहीं होता।

उदासी भरे इन पीले पत्तों के मौसम में सिर्फ तुम्हारी यादें साए की तरह मेरे साथ साथ ही मेरे पास पास ही। परछाइयों के इस सफर में हमारे रास्ते पथरीले हैं, पर तुम्हारे हैं उम्मीदों से भरे। तुम्हारे लिए फिर सुबह होगी और हमारे नसीब में है हिजर की ढलती शामी। इन रेतीली हवाओं का रुख क्यों नहीं कोई मोड़ लेता है? क्यों नहीं कोई मुझे अपने दामन में पनाह देता है? मेरी चाहतों को हमेशा ये कौन दर्द का लिबास पहनाता है? क्यों कोई मुझे राह रुस्वा छोड़कर यूं ही चला जाता है ये कहकर कि मैं लौट कर तुम्हारे ही पास आऊंगी जीने के लिए? ये मेरा ही कसूर था जो उदासी भरे इन पीले पत्तों के मौसम में मैंने तुम्हें चाहा है अपनी चाहतों की तरह। तुम्हारे आसमां में अपनी परवाज लिए बुलंदियों को छूने की आरजू की, तुम्हारे हाथों की लकीरों में

कुछ तो है जो बेवजह तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरे मासूम ख्यालों को तन्हा कर जाते हो, और मैं तुम्हें सोचता रहता हूं देर तक कि तुम मुझे अपने आंचल में जो छिपाते, तो शायद मैं खुदा से जीने की आरजू करता, गुजारिश करता, मेरे एहसास को तुम संभालते, मेरी धड़कनों में मेरे साथ शामिल हो जाते, मेरे अधूरे सफर में मेरे हम सफर बन जाते, मेरी वीरानियों को तुम आबाद करते, मेरी राहों को तुम मुनव्वर करते, अपने सितम अपनी परेशानी मुझे दे देते, मगर ये हो न सका क्योंकि तुम्हें जाना था दूर किसी और की दुनिया में, जहां शायद उजाले तुम्हारी राहों को रोशन करने के लिए मुंतजर हैं, जहां पिंजरों में कैद परिंदे तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं अपनी आजादी के लिए, जहां ये बेजुबान पत्थर कुछ बोलने की फिराक में है, जहां ये अपनी खामोशी तोड़ने के लिए तरस रहे हैं, बेचैन हैं, मगर अब मुझे खुद को संभालने के लिए किसके हाथ उठेंगे मेरी दुआओं के लिए।

दोस्तों, फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय कर रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। ये सफर जारी है। जब रिश्ते टूट गए तो फिर कल्पना क्यों करें, क्यों तुम्हारे बारे में सोचे। क्यों तुम्हारे दिए हुए तोहफे संभाल कर रखे, फिर क्यों ना हम तुम्हारे लिखे हुए खत जलाएं, तुम्हारी दी हुई निशानियां इन पानियों में बहा दे, तुम्हारे घर तक जा रहे इन रास्तों को भूल जाने की कोशिश करें। जब ये रिश्ते टूट गए तो फिर हम क्यों उजालों का इंतजार करें। क्यों न गुप अंधेरों में गुम हो जाए, तन्हा चले चले बचपन के आगोश में, मिट्टी के खिलौनों से टूटी दीवारों को सजाएं, रंग बदलती दुनिया की तस्वीरों को आखिरी बार। आखिरी बार अपने कैनवास पर उतारने की कोशिश करें। शायद इस बार मैं एक पायदार तस्वीर बनाने में सफल हो जाऊं।

यही वो जगह है जहां हम मिले थे कभी। सब कुछ अपनी जगह बरकरार है, कायम है। हाँ, ये चिनार तब बहुत छोटा था, पर अब इसकी शाखाएं आसमां से बातें करने लगी हैं। इसकी नरम नाजुक परछाई में बिछे मखमली घास पर करवटें लेने को दिल कर रहा है, क्योंकि ये जगह आज भी वैसी ही है जैसे पहले कभी हुआ करती थी, जहां सुनहरी शामों से पहले आफताब का मंजर हमारी सांसों को ताजगी बख्शता रहा। ये हवाएं हमारी रूहों को अमन सुकून से नवाजती रहीं। ये पानी अमृत से कम नहीं। यहां इन परिंदों की मीठी मीठी बोली सरगम की तान छेड़ती थी, और हर कोई अपनी आवाज इनकी बोली से मिलाया करता था, ताकि यहां का माहौल संगीतमय हो। बदला अगर है कुछ तो वो है सिर्फ हमारा अतीत, हमारा बचपन, जो शायद कभी भी लौट कर नहीं आ सकता।

बस इतना ही। ये सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रही थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:20। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी, और सब अब समय हो चला है आपके अपने मनपसंद स्टेशन रेडियो वितस्ता 90.0 FM के आज के इस बेहद पावन और खास सफर को यहीं पर विराम देने का। आज का दिन सिर्फ एक साधारण दिन नहीं था, बल्कि आज पूरे देश के साथ साथ हमारे इस डिजिटल मंच पर भी भक्ति, उल्लास और आनंद का अनूठा संगम देखने को मिला। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महा उत्सव है। नटखट, माखन चोर, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की गूंज आज वितस्ता की लहरों से लेकर आप सभी के दिलों तक साफ सुनाई दे रही है। जी हां दोस्तों, आज अंबाला के जो यहां पर सरसेहिडी में महामृत्युंजय मंदिर जो यहां पर बना है कई सालों से, जहां पर सभी कश्मीरी पंडित जितने भी यहां पर रहते हैं वो वहां पर एकत्रित होते हैं और जन्माष्टमी का पर्व वहां मनाते हैं। आज इस उपलक्ष्य में कम्युनिटी के यहां बहुत सारे परिवार मंदिर पे थे, पाठ पूजा हुई, शंकर भगवान का जल अभिषेक हुआ, उसके बाद भगवान कृष्ण का जल अभिषेक होने के साथ साथ नए कपड़े पहनाए गए और सभी हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो वहां पर थे, और हमारे प्रधान प्रोफेसर अशोक कुमार वातल जी और उनकी टीम और सभी बिरादरी के लोग वहां पर थे, और बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस दिन को मनाया गया और आपस में मिलन भी हुआ। तो ये इस पर्व की बड़ी खास बात है, जहां पर हम सब लोग एक जगह पर आ जाते हैं और अपने दिलों की बात करते हैं, और साथ में आज के इस भाग दौड़ के युग में एक दूसरे से मिलते भी हैं और गले भी लगते हैं। एक बार फिर आप सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे चलता हूं। आज के दिन गूगल का जन्म हुआ था 1998 में। जिस इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के जरिए आज हम सब जुड़े हैं, उस गूगल को 4 सितंबर 1998 को ही लैरी पेज और सर्गे ब्रिन द्वारा एक आधिकारिक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। नेशनल मेडिकोमिया नेट डे। ड्राई फ्रूट्स के शौकीनों के लिए ये स्वादिष्ट नट्स के पोषण को मनाने का दिन होता है। तो दोस्तों, ये था आज का विषय, और आज के प्रसारण को समाप्त करने से पहले रेडियो वितस्ता परिवार की तरफ से यह खास नज्म आप सभी के नाम। आज की जो पंक्तियां हैं वो यूं है, माखन चोर की लीला न्यारी सजी सुरों की आज महफिल सारी। माखन चोर की लीला न्यारी सजी सुरों की आज महफिल सारी, रेडियो वितस्ता के संग गुजरी यह जन्माष्टमी की रात प्यारी। जैसे बहती है वितस्ता शांति और प्रेम का संदेश लिए, जैसे बहती है वितस्ता शांति और प्रेम का संदेश लिए, कान्हा का आशीर्वाद सजे आपकी हर एक सुबह शाम प्यारी। कान्हा का आशीर्वाद सजे आपकी हर एक सुबह शाम प्यारी। तो दोस्तों, ये थे आज की पंक्तियां, और जाते जाते आपको मैं कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 5 सितंबर 2026 शनिवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत और भजन सुनेंगे आप, और 7:05 पर कार्यक्रम होगा टीचर्स डे स्पेशल, पेश करेंगे आरजे किरनी। 8:30 किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट का एपिसोड 9 होगा तनाव और उसका समाधान, और 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल जगत। हम बात करेंगे गुरसीरत कौर के साथ।
10:05 पर होगा कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 12। हमारे साथ होंगे अतुल भाटिया, कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी, संगीत की सभा जारी रहेगी 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7 बजे पुनः प्रसारण होगा टीचर्स डे स्पेशल का, और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, कल की कड़ी है मेरे खुशबू के एहसास। जी हाँ दोस्तों, ये थे आज के कार्यक्रम, कल के कार्यक्रमों का विवरण। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब अपने दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, कान्हा की कृपा और मुरली की मधुर धुन आपके जीवन में सदैव खुशियां बिखेरते रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, अपना और अपनी, अपने परिवार और अपनों का ख्याल रखिए। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।